Dai, अरे दाई इस दाई मस्त खाने बनाएको छु के दाई ए दाई प्लिज बाबा दाई दाई काम बिगारे कि क्या हो